0: ଦୟାଳୁ ଲୋକ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फौलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई।

0: रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बाला सुब्रमण्यम और डॉ जोरामैया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछ भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। वंदनार प्रथम भक्ति अर्घ्य दिवाकर महांती कंठरे ध्रुवचरण साहू रचना।

0: महाजुगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपं ऐश्वरं। हे राजन, एहिपरि कहि महाजुगेश्वर परम पुरुष भगवान अर्जुनंकु तांकर विश्वरूप देखैले। एपरिकि 35तम श्लोकरे संजय जहाँ देखुचन्ति ताहा वर्णना करिछन्ति। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिः बेपमानः किरीटी। एथिरु तांकर धैर्य, निर्विकार भाव एवं भयशून्य हृदयर परिचय मिले। संजय महाभारत युद्धर अवसान परे धृतराष्ट्र गांधारी कुंतिंक सह कठोर तपस्या पाई वनेचर हो जाइथिले। धृतराष्ट्र गांधारी केवल जलपान करुथिले, कुंती मासरे थरे खाउथिले, संजय पांच दिन रे थरे खाउथिले। अनेक कहंती वनाग्निरे धृतराष्ट्र गांधारी एवं कुंतिंक सह संजय मध्य जलिपड़ भस्म हो जाइथिले, किंतु ताहा सत्य नुहे। से अग्निरु रक्षा पाई मृत्युर खबर तपस्वीमानंकु देई हिमालयकु चली जाइथिले। जेमिति ए खबर दबा पाई विधाता तांकु जीवित करी रखिथिला।
1: ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନୁଚିନ୍ତା, ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ତରୁଣକାନ୍ତି ରାଉତ। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଅଧିପତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 24ତମ ଭାଗ। ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।

0: वैगो चेत्येतेषाम् आधिकारिक यात्रायै प्रस्थास्यति। एषा यात्रा अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। गिरमिटिया समुदायानाम् उपस्थितेः कारणादेव एतेषां देशानां भारतेन सह विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन स्वीये वक्तव्ये उक्तं यत् यात्रावधौ डॉ जयशंकरः त्रिदेशानां नेतृत्वैः सह मेलनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां चेन्नईस्थे एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुंबई इंडियंस दलम अष्टस्तोभि पराजितम। हैदराबादस्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे मध्याहने सार्धत्रिवादने सनराइजर्स हैदराबाद दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखी करिष्यति। तत्रैव अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलम पंजाब किंग्स दलम सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक सुनंतु आज प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना सकाळ 17:10 रे आमर स्वास्थ्य कार्यक्रम रे सुनंतु हसंतु सुस्थ रहंतु ए संपर्क रे आलोचना करिसंती डॉक्टर नित्यानंद स्वाई। शिशु संसार सकाळ 17:25 एथिरे रहिछि भजन एवं शिशु संगीत। तत्सन करंक कंठरे गप कविता कहिबे चित्तरंजन महांती, कविता सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी एवं नोआ शिशु साथी परिचय। ओडिया आलबम गीतर कार्यक्रम सकाळ 8:30 वैदेश विलासर द्वादश भाग सकाळ 8:45 मो पसंद सकाळ 9 दिन 10 प्रचार करिबो नाटक समांतराल रचना और प्रयोजना मनोरंजन दास। दिन 11:10 अभुला गीत कंठशिल्पी दामोदर हता एवं केशव चंद्र साहू। लोकसंगीत क्रम दंडनाच गीत दिन 11:30 परिवेषण करिसंती अद्वित सेठी। मंजुला मध्यनरे श्रोता एसएमएस माध्यम हिंदी एवं ओडिया कथाचित्र गीतर कार्यक्रम दिन 12 दिन 1:10 धुड़की गीत परिवेषण करिसंती लक्ष्मीधर मल्लिक। नारीमहल दिन 1:20 रही नाटक बतीघर रचना मीनती नायक प्रयोजना रवींद्र कुमार दास। अपराह 2:45 आपणक चिठी अपराह 3 हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम अपराह 3:10 पीपल्स पद्म और आकाशवाणी रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली रो। असरंती अपराह 3:25 चिरहरित अपराह 4 मिलित कंठरे देशभक्ति गीत अपराह 4:55 स्मृतिर पहाच संध्या 5 रही डॉक्टर शांतनु कुमार रथंक सहित साक्षात्कार प्रथम भाग साक्षात करिसंती तरुणकांति राउत। युवबणी संपर्क में रही श्रोता चिठीपत्र उत्तर संध्या 5:30 गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर षष्ठ भाग संध्या 6:10 ओडिया आलबम गीतर कार्यक्रम संध्या 6:30 राति 7:02 ओडिया कथाचित्र गीतर कार्यक्रम जिला हलचल रे झारसुगुड़ा जिलार हलचल राति 7:25 आकाशवाणी कृषि शिक्षा राति 7:30 हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम राति 8:02 अखिल भारतीय रूपक कार्यक्रम रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली राति 9:30 एवं राति 10 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली। एतिले आमर आज प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम शुणिपारिबे टिके परे।

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सार चमत्कारिता प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: आरंभ करुछु शिशु संसार।

0: the town.
1: अरे बा बढ़िया राइम्स तो कहिलो। अच्छा अर्णव तमे जो कहिलो तमे सकाळ 6टा रु उठिकिरि स्कूल जाउ छ, स्कूल रे केते बेले आसो घर को?
0: 11:30।
1: 11:30 11:30 रु आसिला परे कोन करो?
0: 11:30 रे आसी साला परे मो भाई को देखे, मामा खाया बनांती।
1: भाई को देखे माने भाई कोन छोटो भाई अछि?
0: हां।
1: केते छोटो?
0: से माने बर्ष होई छि भले।
1: तमे तार केयर नउ छ?
0: हां।
1: हां कौन करू छो तुम्हें? तार
0: तारा डायपर चेंज कर दिया, पैंट पिंधे दिया, ता सही खेले मु।
1: तुम्हें तो निजे गुटे इतने कुनी, तुम्हें पूरी तारा डायपर चेंज कर चो, पैंट चेंज कर चो। बा बढ़िया, पूरा बहुत भल पाउ छो तुम भाई को ना। ता भाई रा ना कोनो?
0: ता मोर भाई ना होची अद्विक दास।
1: तुम्हें अर्णव से अद्विक?
0: हाँ।
1: अरे बा कौन खेला खेली करो?
0: हाँ।
1: कौन खेल?
0: हाइड एंड सीक खेलू, नले चोर पुलिस खेलू।
1: का संगे खेल?
0: मो छोट भाई संगे।
1: छोट भाई संगे घर भितर हाइड एंड सीक खेल? तमे कोठी नुच्छ?
0: मु माने घर भितर रुचि रे, बाहर को गले से बाहर को जाई पारियानी ना।
1: नहीं घर भितर कोठी नुच्छ?
0: किचन रे बेसी टाइम रे लुचे, वाशिंग मशीन पाखरे, नले बाथरूम रे। हां
1: आ सी नुचे? तमे जेते बडे आखी बंद करो
0: ना से लुचे पारियानी,
1: ता माने सब बले तमकु ही लुचिया को पड़े।
0: हां
1: नहीं सी खाली खोजे तमकु।
0: हां
1: आ खोजी देले पाई गेले से खुशी जे?
0: हां
1: खुशी की कौन करे?
0: खुशी है की नाचे डिग्री
1: डांस करे?
0: हां
1: फ्री टाइम रे कौन करो ताले? आउ
0: पेंटिंग।
1: हां पेंटिंग भी करो? तमे कहुथिलो तमे बहुत सुंदर श्लोक सब सिकिचो, आमो पिला मानकु गोटे कहिबनी?
0: हां
1: कहि देला देखिया।

0: प्रचोदया।
1: खूब सुंदर ए श्लोक तुमको किए शिखे
0: मोर बापा
1: बाबा शिखे
0: हाँ।
1: बाबा कौन करते
0: डॉक्टर अच्छा
1: कौटी
0: एसीबी मेडिकल
1: आ मामा
0: मामा हाउस वाइफ
1: बड़ हेले कौन हम कहिले
0: पायलट
1: पायलट हम प्लेन उड़ेब
0: हाँ।
1: तुम आशा पूरण हो एतिकी आमर इच्छा तुम सहित कथा ही बहुत भल लगला अर्णव आज ताहले एठी रहिबा
0: थैंक यू
1: पिलाए आज तो समय सरी सरी आसिलानी पुणि थरे तुम सह भेट हम आगामी रविवार ठीक सकाळ 7:25 रे सुनिबाकु जम्मारे भूलिबनी तुमर प्रिय कार्यक्रम शिशु संसार तेबे आजिरो कार्यक्रम को एठी रखी उठिबा।

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
3: जीएसटी सहित जड़ित नुआ खबर गुड़िक साधारण लोक एवं पूंजी निवेशक आश्वासना देउछि। सबुठारु बड़ रिहाती खाद्यपेय सामग्री उपरे दिया जाइछि। ब्रेड, रुटी, छेना, पनीर उपरे एबे कौनसी जीएसटी लागू हेबो नाही। एहा छोड़ा 33 जरूरी औषधर दर कम करि दिया जाइछि, जहाँ फलरे चिकित्सार खर्च कमिजिबो। लाइफ इन्सुरेन्स उपरे मध्य संपूर्ण भाबरे जीएसटी रिहाती करि दिया जाइछि, जहाद्वारा पॉलिसी किणिबा एबे सस्ता होइजिबो। छोट कार एवं 350 cc बाइक रु जीएसटी उठा जाइ 18% करि दिया जाइछि, जहाँ फलरे एबे बाइक किणिबार स्वप्न साकार हेबो।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से

0: जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से।
1: श्रोतामानी कार्यक्रम सुनुछंदी आकाशवाणी कटक केन्द्ररु समय सकाळ 8:00 बजे जाउछि। परवर्ती कार्यक्रम रिले करि प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्लीरु।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
4: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं।

0: उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी.डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सुरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमरीकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर

0: पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
1: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों के पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5000

तेबे एमिति सुंदर सकाळर सुंदर भावना सहित आरंभ करिदेबा आपणक सहित मधुर आलाप आउ मनछुआ गीतर जुगलबंदी मो पसंद देखिनबा कि अछंती आम साथी आम पाखरी पुनी फोन कॉल रे।

0: मेरा
1: ना,
0: कौन है उर्मिला? कौन है ला उर्मिला? उर्मिला
1: तुम्हें जानी चा
0: कौन?
1: मुठी कोई दिले बुढ़ार दुर्भाग्य पे श्वेता। हाँ यही श्वेता।
0: कौन है सब कोच तुम्हें?
1: मु ठीक कहू छी, मु सब ठीक देखि पड़छे जमिति। बरम तुम्हें अन्य कथा कहूतलो ना, से को दल रे मिसिनी, को दल संगरे मिसि से अन्य दल संगरे गंडगोल करिनै। बरम ठीक उल्टा, मु ठीक जानि पड़छे, ठीक कारण मु जानि पड़छे। अन्य माने ताको माने तारी संग माने ताको आक्रमण करिसेंति, ए जको रक्षा करिया पई से समानक घेरे रे पड़ि जाय छी। बस तापरे आउ कौन है पारे, खंडगोल जेते अशांति पुलिस आसीब, तापरे अरेस्ट, समस्त को समस्त गंडगोल थिले। बुढ़ा से तो बाज बाबा कहेंगे
0: किंतु कहें कि ता संग मन संग तारे में थे गला कहें कि
1: ईर्षा, पुरुष और ईर्षा, बुढ़ा तो पिला नहीं, से जदी जानी

0: ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଏଲ୍ଆଇସି କୁ ରିହାତି ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଜିଏସ୍ଟି ହଟିଯିବା କାରଣରୁ ବୀମା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
0: ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିହାତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରେଡ୍, ରୁଟି, ଛେନା, ପନିର ଉପରେ ଏବେ କୌଣସି ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା 33 ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଦର କମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ। ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିଏସ୍ଟି ରିହାତି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଲିସି କିଣିବା ଏବେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ କାର୍ ଏବଂ 350 cc ବାଇକ୍ରୁ ଜିଏସ୍ଟି ଉଠାଯାଇ 18% କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବାଇକ୍ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: श्रोतामाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।

एक दूजे के लिए चलचित्र गीतटी जुगल कंठरे गाइले एसपी बाल सुब्रमण्यम ए लता मंगेशकर परवर्त एसएमएस टी को देखते शुभंकर राउत केन्द्रापड़ा पटकुरु आपणा चाहते चलचित्र इडियट ड्रीमी ड्रीमी गीतटी जहाक द्वैत कंठरे गई सत्यजित प्रधान तपु मिश्र आपण अनुरोध गीतटी आपण को शुणाई देउछु।

0: শ্রোতাবন্ধু, এইটি শেষ করছো আজকের মঞ্জুরা মধ্যাহ্ন কার্যক্রম। সময় বর্তমানে ষ্টুডিও ঘরে দিন গোটাই বাজিবাকু যাওছি। প্রথমে হিন্দি এবং পরে পরে ইংরাজী সম্বাদ রিলে করে প্রচার করব আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রর কিছুক্ষণ মধ্যে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
4: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल लैडर

0: फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कुआड़े गला से हे से ताकु धरि नै जाउ जाओ होला ताकु नै एछो जाओ
1: अरे की कहा को नै जाउ छी
0: तमे जानि न से पूरा केपा केपा गोड़ रे डग डग ही चली जाउ छी से मो चिकन को नै जाई छी से नै जाई छी मो बाबूली को कुनी टुनी मिता पुतु समस्त को नै जाई छी मु ताकु मार देबी मारे देबी मु ताकु मारे देबी मारे देबी
1: लोरा राती अधरे ई की पागल है सुनले नै शिष्य कोन कहिला
0: बहुत
1: ना, तो बिल्कुल ठंडा ये शीत दिन में भी तम देह बर्षा पानी झाड़ा नहीं पड़ी

0: department, this spell of rain may continue in the coming days, which would lead to a further drop in temperature. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
1: Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over northeast India, Kerala, Mahe, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu and Puducherry. Places over Jammu and Kashmir, Ladakh, Chhattisgarh and coastal Andhra Pradesh are expected to experience thunderstorms and lightning today. Similar weather conditions also likely to prevail today over parts of Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Odisha, Kerala, Punjab and Madhya Pradesh. The weather agency further predicted heat wave conditions today in places over coastal Andhra Pradesh. According to IMD, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to witness hot and humid weather conditions till tomorrow. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Kolkata Knight Riders at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 3:30 today. Sunrisers Hyderabad are currently in third place, while Kolkata Knight Riders are positioned in eighth place. In another match, host Gujarat Titans will face Punjab Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Stage is set for counting of votes for four states' assemblies and one union territory tomorrow. All arrangement in place. Election Commission orders re-polling in all 285 polling stations of Falta Assembly constituency in West Bengal. Polling to take place on the 21st of this month. A massive fire claims 9 lives in Vivek Vihar area of Delhi. OPEC plus countries agree in principle to raise oil output targets next month amid ongoing West Asia conflict. World Press Freedom Day been observed today. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Kolkata Knight Riders today. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
3: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
2: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
4: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए

0: स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कार्यकाल यनम और माहे में होगी।
0: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
2: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
3: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। डीएमके और टीवीके ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
6: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें 4 बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में

0: कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद यह लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की। उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा

का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष

0: दी जाए। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्धशहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ଏଥରଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୃତିର ପାହାଚ, ପ୍ରଯୋଜନା ସଦ୍ୟସ୍ମିତା ବେହେରା, ଉପସ୍ଥାପନା ଇନା ପୁରୋହିତ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: समृद्धि आणंतु
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारितारे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइजिवो। ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
3: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पारे।

श्री रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

0: पानी बढ़ाना ताकि अन्नदाता हमेशा सुखी रहे, आनंदित रहे, लगातार आगे बढ़ता रहे। और इसलिए पिछले साल हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था उड़ीसा में।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदेई कहिछन्ति प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार प्रथम पर्याय 15,808 सड़क 523 सेतु मध्यरु प्राय समस्त कार्य संपूर्ण करी ओडिशा उदाहरण सृष्टि करिछि। केन्द्र राज्य सरकारको मिलित उद्यमरे ग्रामांचलरे गमनागमनको सुव्यवस्थित कराउछि बोली मुख्यमंत्री कहिछन्ति।
0: 2036 सुद्धा ओडिशाको समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा बाबे गढ़ी तोड़ीबा पई आज हमरो उद्यम आम राज्य सरकार जारी रही। आम जानू ग्रामांचल उन्नति बिना आम समृद्ध ओडिशा केवे संभव हो पारिबो नाही। सेतिपाई ग्रामांचल ये भित्तिभूमि से रास्ता हो, पानी जल हो, बिजुली हो, ये समस्त व्यवस्था को आज आपण मानकर पाखरे पहुंचाइबार ये होची आम मौलिक दायित्व एवं आम प्रतिबद्धतार सहित काम करूछु। ग्रामांचल गमनागम रास्ता सुदृढ़ हो पारे आपण मानकर भितरे रोजगार बढ़ी पारिबो, चाष कम आगे पार, शिक्षार मान बढ़ी पार एवं विशेष करके आम स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक लाभवान हो पार। एणु निश्चित भाव आज प्रत्येक क्षेत्र में आम सरकार एक मिशन मोड्रे काम कर।
1: राष्ट्रर समृद्धि और सामग्रिक विकास में श्रमिकों श्रम निष्ठा और प्रतिबद्धता को सम्मान जणाइ चलित मास 1 तारीख में आंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालित हो। यह दिवस पालन अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी श्रमिक मानंकु शुभेच्छा जणाइथिले। से कहिथिले श्रमिक समाज सर्वांगीन उन्नति कल्याण तथा अधिकार सुरक्षा पई राज्य सरकार प्रतिबद्ध बोली श्री माझी कहिथिले।
2: राज्य श्रमिक भाई बणी मानंकर पई दैनिक 10 टंका हररे महंगा भत्ता पिछला भावे एप्रिल 1 तारीख थारु वृद्धि निमन्ते घोषणा करूछि। एहा द्वारा राज्य सर्वनिम्न मजूरी अणकुशरी वर्ग श्रमिक मानी दैनिक 472 टंका, अर्धकुशरी श्रमिक मानी दैनिक 522 टंका, कुशली श्रमिक मानी दैनिक 572 टंका और उच्चकुशली श्रमिक मानी दैनिक 622 टंका को एप्रिल 1 तारीख ठार वृद्धि करागला।
1: एतिकरे सेसला समाचार दर्पण प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग उपस्थापनारे मु सत्यव्रत बेहुरा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना

0: केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: जनादेश 2026।
7: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
6: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
7: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।

0: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दू कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने यह संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वह हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और

0: ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And now the news in detail. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam, and the Union Territory of Puducherry to be held tomorrow. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी।
1: समय की तरंगों पर तैरती एक ऐसी आवाज जिसने 9 दशकों तक भारत के हृदय की धड़कन को शब्द दिए हैं। आज जब आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है तो हम लौट रहे हैं उस विरासत की ओर जहां स्वर और शब्द मिलकर राष्ट्र की चेतना जगाते थे।
2: ये आकाशवाणी है।
1: ये शब्द सिर्फ एक सूचना नहीं, एक संस्कृति की धड़कन है। जब किताबें कुछ ही लोगों की मेज तक सीमित थी तो इस आवाज ने बंद दरवाजों को खोलकर साहित्य और संस्कृति को आम आदमी के चूल्हे चौके और बैठक तक पहुंचाया।
3: एक ऐसा मंच जहां शब्द पन्नों की कैद से आजाद होकर सीधे हिंदुस्तान
4: हिंदुस्तान के दिल में उतर गए। 90 साल और एक अटूट रिश्ता, ये कहानी है आकाशवाणी और भारतीय साहित्य के साथ।

0: संस्कृति के उस मिलन की जिसने भारत की सोच को गढ़ा।
1: साहित्यकार जो देना चाहता है वो अनेक आगत युगों तक रहेगा और उसकी रचना कालजयी हो सकती, समय की सीमा को पार करती है। साहित्यकार को जीवित रखने के लिए उसके सृजनात्मक शक्ति को अच्छे रखना होगा।
2: यह आवाज थी कवयित्री महादेवी वर्मा की। 50 और 60 के दशक में आकाशवाणी के गलियारे भारत के साहित्यिक संसद जैसे थे। यहाँ निराला अपनी गूंजती आवाज में कविता पढ़ते थे तो बच्चन अपनी मधुशाला की रूह उतारते थे।

यह आवाज थी कवयित्री महादेवी वर्मा की। 50 और 60 के दशक में आकाशवाणी के गलियारे भारत के साहित्यिक संसद जैसे थे। यहाँ निराला अपनी गूंजती आवाज में कविता पढ़ते थे तो बच्चन अपनी मधुशाला की रूह उतारते थे।

0: ये थी हरिवंश राय बच्चन के स्वर में उनकी कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ।
1: पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार और लेखक विजय दत्त श्रीधर का मानना है कि साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ भाषा और विषयों के चयन को लेकर आकाशवाणी ने अपनी अनूठी पहचान दशकों से कायम रखी है।
2: आकाशवाणी का भारत के जनजीवन में लोक प्रसारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उसका महत्व जब अकेला प्रिंट मीडिया था सामने तब भी बरकरार था, टेलीविजन मीडिया आया तब भी बरकरार रहा, अब सोशल मीडिया और निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है तब भी आकाशवाणी का महत्व बरकरार है और इसका कारण है उसकी विश्वसनीयता, उसकी भाषा में, प्रस्तुति में, विषयों के चयन में संयम है, एक सुसंस्कृति है। फिर आकाशवाणी ने कई बहुत अद्भुत काम किए, पहले किसानों की, विज्ञान संबंधी, युवाओं के लिए कितनी सारी जानकारियां ये नियमित रूप से आकाशवाणी समाज तक पहुंचाता रहा है।
0: कई साहित्यकारों के लिए आकाशवाणी एक संस्कार रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका ममता कालिया अपनी यादों को साझा करते हुए कहती हैं,
3: मुझे 50 का जमाना याद आ रहा है जब मैं 9 साल की थी। मेरे पिता ने तब आकाशवाणी ज्वाइन किया। मेरे पिता का नाम था श्री विद्या भूषण अग्रवाल और मेरे चाचा भी रेडियो में थे, उनका नाम था श्री भारत भूषण अग्रवाल और विख्यात कवि थे वो। और मेरी साहित्य की यात्रा में रेडियो ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और देखो, रेडियो कहता था इस बार कविताएं ब्रॉडकास्ट करेंगे, आप कविताएं लिख के लाइए, तो रेडियो की वजह से मैंने 10-10 कविताएं लिख दी। मेरी भाषा में जो आज सरलता है जिसके कारण शायद लोग पढ़ लेते हैं मुझे, मुझे याद है कि बचपन में जैनेन्द्र कुमार तक ऐसे थे कि वो अपनी कहानी लिख के पापा को दिखाते थे कि देख लो रेडियो के लायक है कि नहीं, इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है। पापा हमेशा कहा करते थे कि भाई रेडियो की भाषा सरल भाषा होनी चाहिए। विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए, रेडियो से ही वो इतने विख्यात साहित्यकार बने क्योंकि रेडियो में जो था कि उनकी कहानी नाट्य रूपांतर हुआ था और वो जा न सकी। गृहस्थी नाम की कहानी थी उनकी जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, उसी पर रेडियो का नाटक बना और वो नाटक जाने कितनी बार खेला गया। मैंने ही अनुवाद किया था जब मैं एमए में आई तो मेरे डॉक्टर फॉस्टर्स मार्लो का जो प्ले है सिल्ली स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ, वो बहुत सुना गया। आप समझो उस समय आकाशवाणी एक गढ़ रहा कि जो भी अच्छी रचना है तो सबसे पहले सोचते थे इसको रेडियो को दे दे।
1: बहुत सारे श्रोताओं को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि साहित्यकारों को भी आकाशवाणी में ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला एक ऐसा ही अनुभव साझा करते हुए कहते हैं,
4: आकाशवाणी से संबंध बना तब मुझे लगा कि ये तो केवल गाने तक सीमित नहीं है भाई, और केवल समाचार तक सीमित नहीं है, और सामान्य जनता जो है वो गाने गानों पर, लोकगीतों के बड़ी बहार थी सर, इसमें साहित्य भी कहीं होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो सब पता चला जब पहली बार मुझे ही जब पहली बार बुलाया गया। ये बात मैं कर रहा हूँ 74 से 80 के बीच का कोई सन रहा होगा कि जब कि बनारस में रेडियो स्टेशन खुला। अच्छा, रेडियो में तो ये भी था कि समय के आधार पर उतने समय में वो समाप्त हो जाए। मेरी कहानी पहुंची जब वहाँ तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलवाया। इसमें फिर ऑडिशन होता है, कहानी हमारी उनके पास थी, कहा कि इसको कुछ नहीं करना, पढ़ना है अब और इतने मिनट में इसको खत्म करना है। तो पता चला हर तीसरे महीने हमें बुलाया जाने लगा वहाँ, तो कभी कविता पाठ, तो कभी कहानी पाठ, कभी वार्ता के लिए कोई विषय दे दिया, कभी कोई बड़ी हस्ती पहुंच गए तो कहते थे साहब इंटरव्यू आप ले लीजिए। इसके बाद तो फिर साहब फिर वो इतने प्रसारण शुरू हो गए

0: मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है, जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि अब तो आ गया मोबाइल का युग, लेकिन इसके बावजूद भी आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
1: आकाशवाणी के जरिए साहित्य सिर्फ महानगरीय हिंदी तक सीमित नहीं रहा, आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारतीयता के असली रंग बिखेरे। जालंधर से हीर रांझा की गूंज हो, कोलकाता से टैगोर की रचनाएं या चेन्नई से संगम साहित्य की चर्चा, आकाशवाणी ने भारत को एक सूत्र में पिरोया।
2: आकाशवाणी का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन सर्वभाषा कवि सम्मेलन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है, जिसका प्रसारण 1956 से होता आया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आकाशवाणी सर्वभाषा कवि सम्मेलन का हिस्सा रहे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि अब्दुल बिस्मिल्ला अपने अनुभवों को कुछ यूं साझा करते हैं।
0: 26 जनवरी जो होती है उस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ये आकाशवाणी कराता था, हमको इसकी जानकारी थी, तो जो कविता हमारी चुनी गई थी वो कविता हमें भेजी गई और हमसे कहा गया कि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद जरूरी होता है क्योंकि वो अंग्रेजी से फिर वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होता है, यानी हर भाषा की कविता का हर भाषा में अनुवाद होता है।
2: उत्तर पूर्व से लेकर पूरे देश तक आवाजों को जोड़ने वाला सेतु रहा आकाशवाणी। कवि और नाटककार राजीव कुमार फुकन के अनुभव इसे और खास बनाते हैं।
3: बचपन से ही रेडियो पर प्रसारित होने वाली कविताएं, नाटकों और साहित्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता गया। लेखन के दौरान रेडियो पर प्रसारित होने वाली नाटक, उनकी कहानियां और पात्र मेरे मन में बसे रहते हैं। अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित होता है। जब मेरी कविताएं या नाटक अखिल भारतीय रेडियो पर प्रसारित होते हैं, तो मुझे उनका जीवंत रूप दिखाई देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का आकाशवाणी से गहरा जुड़ाव रहा है और यह आज भी कायम है।
2: सिर्फ कविता कहानी ही नहीं, हवा महल और झलकी जैसे कार्यक्रमों ने कहानी कहने की कला को पुनर्जीवित किया। रेडियो नाटकों ने अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसने कभी थिएटर नहीं देखा था,
1: और इन सब से लोगों में पढ़ने की ललक जगी। रेडियो पर सुनी गई कहानियों ने पुस्तकालयों की कतारें लंबी कर दी। आकाशवाणी सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला रही जहां कलाकारों को तराशा गया।
2: नाटकों के माध्यम से अपना करियर शुरू करने वाले और बाद में टीवी और फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेता बने राजीव वर्मा अपने शुरुआती दिनों को कुछ यूं याद करते हैं।
4: पहले तो मैं आकाशवाणी को ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसने मेरे रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के जो मेरा एक लंबा अरसा रहा है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान मैं आकाशवाणी का मानता हूं। आकाशवाणी ने मेरी आवाज को, मेरे तलफ्फुज को, उच्चारण को और मेरी जो एक अभिव्यक्ति की जो एक कला है उसको जो परिमार्जन किया है आकाशवाणी ने ही किया है। आकाशवाणी से मेरा संबंध मुझे लगता है कि 1967 से है। 67 में मैं यहाँ ऑडिशन दिया था और उसके साथ फिर युवा वाणी में भी मैं काफी काम किया हूँ एक कैजुअल अनाउंसर की तरह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन की और मेरे व्यक्तित्व के निर्माण और परिमार्जन की सबसे बड़ी जो शिक्षा मुझे मिली है वो आकाशवाणी से मिली है। और उस समय यानी हम लोगों को शहर में और कहीं भी अगर जाते थे तो आकाशवाणी के कलाकार के नाम से जाना जाता था। मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं कुछ साल दिल्ली में भी रहा, कुछ साल बल्कि काफी साल मैं 4-5 साल इंदौर में रहा और बंबई में तो 30-35 साल गुजारे। मैंने सारी जगह मैं आकाशवाणी विविध भारती से कनेक्टेड रहा और लगातार मैं वहां जाता रहा। तो ये नशा जो है ये खत्म नहीं हो सकता श्रोताओं के दिमाग से भी।

ये सबसे बड़ी बात है। एक दौर था जब शास्त्रीय संगीत महफिलों तक सीमित था, लेकिन आकाशवाणी ने इसे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक पहचान दी। खजुराहो हो या कोणार्क, हर बड़े उत्सव की गूंज आकाशवाणी के माध्यम से करोड़ों कानों तक पहुंची।

0: प्रख्यात ध्रुपद कलाकार पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा बताते हैं,
1: मैं और मेरा छोटा भाई रमाकांत, हम दोनों भाई जो है वो 1985 में जो है हमने पहला ऑडिशन दिया था और उस समय हमें सीधा बी हाई ग्रेड मिला था। उस समय बी हाई एकदम डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात होती, ये हम लोगों की भी खुशकिस्मती रही कि फिर कहीं हम लोग गए नहीं, यानी यहाँ इस आकाशवाणी से शुरुआत किया और अभी तक हम इसी आकाशवाणी से यानी आकाशवाणी भोपाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का अपना जो स्टाफ कलाकार स्टाफ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का रहा है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने रेडियो आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाएं देकर के जो है उन्होंने अपना घर भी चलाया है, उस तरीके से उनकी कला को भी एक बल मिला है। तो मैं समझता हूं कि आकाशवाणी का प्रसारण होने वाला कार्यक्रम है ये तो अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलाकार समाज को इकट्ठा करके कलाकारों को जो है यहाँ पर रखा।
0: भारत के महान शास्त्रीय गायक या गायिकाएं चाहे ध्रुपद हो, ख्याल हो या ठुमरी, हर कलाकार की एक ही चाह, आकाशवाणी का ग्रेड। आकाशवाणी का ग्रेडेशन सिस्टम केवल एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि कलाकार के लिए सम्मान की सबसे बड़ी मुहर बन गया। ए ग्रेड या टॉप ग्रेड कलाकार होना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक तपस्या की सिद्धि जैसा माना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान,
2: ऑल इंडिया रेडियो का बहुत पुराना संबंध है मेरा, मैं बहुत छोटा था अपने पिताजी के साथ, ग्वालियर से आता था यहाँ, उस वक्त पिताजी को टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे वो ऑल इंडिया रेडियो के, 150 रुपया मिलता था, अर्ली 60s की बात है, दैट वाज द हाईएस्ट फी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो टॉप ग्रेड म्यूजिशियंस।

0: दिल्ली के भव्य स्टूडियो से दूर आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारत के असली हृदय यानी लोक संस्कृति को जीवित रखा। आकाशवाणी के लोक संगीत कार्यक्रमों ने यह साबित किया कि भारत केवल राज्यों का समूह नहीं बल्कि लोक संस्कृतियों का एक अटूट सूत्र है।
1: गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए हर तरह के कार्यक्रमों को जगह देना, हर वर्ग के श्रोताओं को अपने साथ जोड़ना आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है। पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी कहती हैं,
2: 2:30 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी से होता था। अब वक्त बदल गया होगा शायद, वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं। लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे और मुरारी लाल जी को भी सुनते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे दिल्ली आकाशवाणी से होता था, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में के स्वर आरोह अवरोह पकड़ो फिर एक वो। बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो

0: कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। मंगलवासी हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था।
1: कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने इतिहास रचा, वंदना के भक्ति स्वर हों, विविध भारती का रंगारंग सफर, संगीत सरिता, संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो रूपक या फिर रेडियो नाटक, इन कार्यक्रमों ने कला और संस्कृति को आम आदमी की भाषा में पिरोया। शास्त्रीय संगीत और खासकर कर्नाटक म्यूजिक को गरिमा प्रदान करने में आकाशवाणी ने महती भूमिका निभाई है। भारत के कई आकाशवाणी केंद्रों में बतौर प्रशासक और प्रसारक जुड़े रहे डॉक्टर वागीश शास्त्री, जो अपने आप में बड़े संगीतज्ञ रहे, उनके अनुभव किसी दस्तावेज से कम नहीं है।
2: मुझे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का मौका जरूर मिला। रविशंकर जी, पीजी राघव राव जी, हफीज अहमद खान साहब, सुमति मुटाटकर जी, कर्नाटक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा, शमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जी एन बाल सुब्रमण्यम, श्रीरंगम गोपाल रत्नम, संध्यावंदनम श्रीनिवास राव, टीके गोविंद राव, यमिनी शंकर शास्त्री, महान कलाकार आकाशवाणी के साथ जुड़े थे। केतन वाद्य वृंदा भी एक हिंदुस्तानी यूनिट दिल्ली में और चेन्नई में एक कर्नाटिक यूनिट साउथ इंडियन म्यूजिक बेस करके, तो उसमें पूर्ण चंद्र राव, कामा शास्त्री, यमिनी शास्त्री, शंकर शास्त्री, ऐसे लोग उधर काम किया। दिल्ली में सचदेव पवार जी जैसे लोग भी, उसका कंडक्टर जैसे काम किया, और बहुत सारे गेस्ट कंडक्टर्स जैसे पंडित रविशंकर जी, वायलिन विद्वान लालगुड़ी जयरामन, टीवी गोपाल कृष्ण जी, बहुत सारे लोग आके मध्य वृंदा में नया नया रचना कंपोज करके, तो हर प्रकार से आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत कर्नाटिक हिंदुस्तानी दोनों सिस्टम का कायम रखने के लिए बहुत प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है।

0: Hello there, listeners. Welcome to the magical world of music.
1: Those were such happy times and not so long ago.
0: Come, dream away in a session of Western music where we try to dream a rainbow to every cloud.
1: But they're back again, just like a long-lost friend.
2: आकाशवाणी ने जहां भारतीय संगीत की परंपराओं को सहेजा, वहीं पाश्चात्य संगीत के श्रोताओं के लिए भी हमेशा कुछ नया, कुछ अनूठा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही वजह रही कि एक समर्पित श्रोता वर्ग आकाशवाणी के पाश्चात्य संगीत कार्यक्रमों को सराहता आया है। इन्हीं प्रयासों की कहानी वरिष्ठ प्रसारक और आकाशवाणी की पाश्चात्य संगीत इकाई से जुड़े रहे मनोज माइनकर अपने अनुभवों के जरिए कुछ यूं साझा करते हैं।
3: न सिर्फ भारतीय कला संस्कृति बल्कि विश्व की कई विधाओं को भी आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है सुलभ अंदाज में। आकाशवाणी में पाश्चात्य संगीत जैसे विधा से मेरा संबंध लगभग 37 वर्षों का रहा है। मेरे कार्यकाल के दौरान 1989 में जब मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी, मैं उन लोगों के भी संपर्क में आया जिन्होंने मुझसे पहले शायद 37 या 37 से ज्यादा समय इसी क्षेत्र में बिताए थे। आकाशवाणी के पास वेस्टर्न म्यूजिक की जितनी वैरायटी, जितनी विधाएं, जितनी उपविधाएं रही हैं और हैं, उतनी संभवतः किसी अन्य चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, बात सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल की नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारी विधाएं हैं और आकाशवाणी पॉप से लेकर रॉक, फिर रॉक की उपविधाएं, जैज, कंट्री, डिवोशनल, वर्ल्ड म्यूजिक, न जाने कितने तरह का संगीत अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करता था। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे, अ डेट विथ यू, फोर्सेस रिक्वेस्ट, या युवाणी चैनल पर संडे रिक्वेस्ट,

और प्रस्तुतिकरण का अंदाज एक इनफॉर्मल स्टाइल जो होता है वो एफएम के आने से पहले भी रहा है पाश्चात्य संगीत अनुभाग के कार्यक्रमों में। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सार हमारे पूरी कार्य प्रणाली में निहित है, हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक का बुके रहा है, वो उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक सिंबल है, एक सूचक है। ये प्रवाह थमने वाला नहीं है।

0: हमदम। इंडी पॉप जैसी विधा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली आवाज उषा उथुप के लिए आकाशवाणी एक गाइड, साथी और प्रेरणा रहा है।
1: हमारे दिनों में तो आकाशवाणी सुनती थी, ऑल इंडिया रेडियो, इसी से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ दैट रेडियो इज माय कंपेनियन, माय इंस्पिरेशन, माय गाइड, माय एवरीथिंग। अगर रेडियो ना होता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल। द रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम इन द होल वर्ल्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव ऑल इंडिया रेडियो। हमारी फेवरेट प्रोग्राम थी मधुर गीतम, जिसमें सारे लैंग्वेजेस होते थे, मलयालम, तेलुगु, फिर कन्नड़ा, तमिल, सब होता था। तो इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, एंड फौजी भाइयों की फरमाइश, दैट वॉज माई फेवरेट प्रोग्राम।
2: फिल्मों और फिल्मी गानों को हिट कराने में भी आकाशवाणी का कोई सानी नहीं रहा है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बुकाड़िया बीते दौर को कुछ यूं याद करते हैं।
3: आकाशवाणी ने हमेशा हम लोगों के गाने बजाए, उन गानों के माध्यम से, इनके माध्यम से गाने लोगों तक पहुंचते रहे, गाने हिट हुए और हिट होने की वजह से फिर लोग पब्लिक सिनेमा हॉल में आते थे। तो आपका बहुत योगदान फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: क्या आपने कभी रंगों को सुना है या कभी पत्थर पर चलती छेनी की संगीतबद्ध टंकार को महसूस किया है? आकाशवाणी ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। अचरज की बात है कि एक ऐसा माध्यम जो केवल सुनाई देता है, उसने चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को भी करोड़ों लोगों की कल्पनाओं में जीवंत कर दिया।
4: The builders of a great empire needed to establish their authority on Indian soil, to make their presence seen and felt. This is how they did it, through architecture, to leave a mark on Indian skies.
2: अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र हों या आधुनिक शिल्पकार रामकिंकर बैज की विशाल प्रतिमाएं, आकाशवाणी के रेडियो फीचर ने इन मूक कलाकृतियों को भी जबान दी।
0: आकाशवाणी के आर्काइव आज दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक हैं। महात्मा गांधी की आवाज हो या महान संगीत साधकों की दुर्लभ धरोहर, यहाँ इतिहास सांस लेता है।
2: चाहे वो बंगाल का बाउल हो, झारखंड का झुमेर, छत्तीसगढ़ की पंडवानी या दक्षिण भारत की यक्षगान शैली, आकाशवाणी ने इन विलुप्त होती कलाओं को न केवल मंच दिया बल्कि उन्हें रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया। लेखक, कवि और अभिनेता के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख सच्चिदानंद जोशी कहते हैं,
5: हम सब जानते हैं कि लोक संगीत अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन अगर उसे व्यापकता देने का कहीं काम किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। बुंदेली लोकगीत कौन सा हो, बघेली लोकगीत कौन सा हो, निमाड़ी लोकगीत कौन सा हो, मालवी लोकगीत कौन सा हो, वो सब लोकप्रिय कराने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो दूरस्थ अंचल है वहां पर जाने वाला माध्यम आकाशवाणी ही है, तो चाहे वहां पर उनकी उनकी संस्कृति को पहुंचाने का काम हो, चाहे बाहर की कोई और संस्कृति की झलक उस क्षेत्र में पहुंचाने का काम हो, तो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर आकाशवाणी की पहुंच है। भारत की पूरी लोक गीतों की परंपरा का ये संभवतः विश्व में सबसे बड़ा आर्काइव होगा।

0: और उसमें भारत के हर प्रांत की तमाम जनजातियों के गीत संग्रहित हैं। आकाशवाणी का अपना बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का भी बहुत अच्छा आर्काइव है, थिएटर का नाटकों का तो निश्चित तौर पर है ही आर्काइव, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देश के मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मूर्धन्य साहित्यकार होगा जो आकाशवाणी पर नहीं आया होगा, निश्चित तौर पर उस समय तो आए हैं। तो ये इतना बड़ा काम सहेजने का काम आकाशवाणी करता है।
1: जाने माने साहित्यकार, व्यंगकार और पत्रकार यशवंत व्यास साहित्य और संस्कृति के नजरिए से आकाशवाणी को एक समृद्ध खजाना मानते हैं।
2: आकाशवाणी एक ऐसी बूंद है जो मन पर गिरते ही यादों को जिंदा कर देती है। कितनी ही विलक्षण आवाजें इसकी दुनिया में सुरक्षित हैं, शब्द, गीत, संवाद, संगीत, सुबह उठने की धुन और रात के आखिरी गीत। वे दिन थे जब युवाणी में कविता सुनाकर आदमी मशहूर हुआ जाता था, नाटक और खबरों की पहली और आखिरी पनाह गाह थी रेडियो की वो फ्रीक्वेंसी। अभी भी वो खजाना है, अभी भी वो सबक है तमाम शोर शराबे के बीच यादों के उजाले का। आकाशवाणी अभी भी अपने साथ रहती है उसी तरह।
3: शब्दों और आवाजों की इस विरासत ने पीढ़ियों को जोड़ा है, संस्कृतियों को सवारा है और प्रतिभाओं को पहचान दी है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गूंज है। सुनते रहिए आकाशवाणी।
4: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर आनंद श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: जी आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है नीरज मिश्र का सितार वादन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक नीरज मिश्र बनारस घराने की सुदीर्घ समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका प्रवेश मात्र 5 वर्ष की अवस्था में हुआ, जब उन्होंने अपने पिता और गुरु सुप्रसिद्ध सितार वादक अमरनाथ मिश्र से सितार वादन की विधिवत शिक्षा आरंभ की। गहन प्रशिक्षण के पश्चात नीरज मिश्र ने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सितार में स्नातकोत्तर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमफिल की डिग्री हासिल की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार नीरज मिश्र ने देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें संकट मोचन संगीत समारोह, गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, कबीरा महोत्सव, आईसीसीआर संगीत समारोह प्रमुख हैं। उन्होंने यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भी सितार वादन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत की है आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार देव नारायण मिश्र ने। नीरज मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग दरबारी में आलाप, जोड़ और झाला से कर रहे हैं। विलंबित मसीद खानी गत, मध्य लय और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स एडिशन ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय नीरज मिश्रा, अ डिस्टिंग्विश्ड एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड सितार।

0: आपने सुना राग दरबारी। नीरज मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री में सितार वादन। विलंबित मसीद खानी गत 3 ताल में, मध्य लय 1 ताल में और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग दरबारी। नीरज मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितारे साइटल इन राग बागेश्री। विलंबित मसीद खानी गत इज इन 3 ताल, मध्य लय इज इन 1 ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू 3 ताल।

0: राग बागेश्री के पश्चात नीरज मिश्र आज अपने कार्यक्रम का समापन सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग बागेश्री, नीरज मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र भैरवी।

0: आप सुन रहे थे सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन। कलाकार थे नीरज मिश्र। आज के रविवासरीय संगीत सभा में आपके साथ तबले पर संगति की देव नारायण मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र भैरवी प्लेड ऑन सितार बाय नीरज मिश्रा इन टू नाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Accompanying him on tabla was Dev Narayan Mishra. Recorded earlier at Akashvani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरला में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपन माने कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
3: राति 11:05 मुख्य संवाद सह मु महेन्द्र कुमार माझी। पश्चिमबंग, केरलम, तमिलनाडु, आसाम राज्य समेत केन्द्रशासित अञ्चल पुडुचेरी विधानसभा निमन्ते आसन्ताकालि हेब भोट गणति, समस्त प्रस्तुति चूडान्त। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसन्ताकाली उत्तर प्रदेशर प्रयागराजठारे प्रजुक्ति विद्या, शिल्प ओ सेना समन्वयर वार्ता नै रक्षा त्रिवेणी संगमर उद्घाटन करिवे। स्वास्थ्य मन्त्रालय पक्षरु आसन्ताकालीठारु पालन करिजिव सर्वभारतीय अग्नि निरापत्ता सप्ताह। आईपीएल क्रिकेटरे पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओभरे 9 विकेट हराई 163 रन संग्रह करिथिबा बेले गुजरात टाइटन्स 17 ओभरे 5 विकेट हराई 140 रन संग्रह करिछे। जातीय शिक्षानीति 2020 कार्यकारिता संपर्कित कर्मशाला प्रज्ञा प्रेरणार उद्यापनी समारोहरे जोगदेले राज्यपाल। ओमफेड क्षीर लिटर पिछा 4 टंका वृद्धि। विधानसभा कमिटी संपर्कित सर्वभारतीय बाचस्पति सम्मेलन आसंता 5 तारीख अनुष्ठित। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ

0: ଶେଷ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତସ୍ୟ କୁସୁମ। ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା। ଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ବନମାଳୀ ଏବଂ ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନାରୁ।
1: सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी। डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: चिक चिक चिक चिक, खिच पिच खिच पिच।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: चिक चिक चिक चिक।
5: कार्यक्रम प्रसारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज चके। एक कार्यक्रम डीटीएच एवं न्यूज ऑन एयर ऐप माध्यम ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରୁ କେତୋଟି ଭକ୍ତିଗୀତ। ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତିଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରଚନା। ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ରାଧାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ।

0: दर्शक वृंद खबरदार जदि ब्रेकिंग न्यूज हेबार बंचिबार अछि तबे पैसा पठेबा समय रे नाम आउ धनराशि सर्वदा पुनी थरे जांच करंतु।
1: आरबीआई कहे कहाको भी पेमेंट कला बेले टिकिए ध्यान र सहित।
2: बड़ उद्देश्य र घर बनेबार अछि तो एई कथाटी सुनिकि जा
3: भाई, बहुत परिश्रम कली हेले लोक माने कहउछन्ति जे परिवार रा देखा सुना करिवारे मोर किछि भूल रही गला।
2: निज लोकक पई तो शहर जाईथिलो काम खोजिबाकु।
3: हां भाई, निज रोजगार रे आजि परिवार पई घर तयारी करूछि।
2: आउ देशर नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक बाछी की तुमे किछि भूल करिन।
3: ठीक कहिलो भाई,
2: घर एक सुजोग एक सेथि पई सीमेंट भी देशर नंबर 1 अल्ट्राटेक।
4: हेलो
5: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहू छी।
4: पूनी थारे
5: आपण डिजिटल अरेस्ट रे छंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिली छी, लंबा फसीबे।
6: 10 लाख दियंतु, बंची जिबे।
4: सर एत्ते कोठो
6: गोटे लिंक पठै छी, एबे प्रोसेसिंग पई 2 लाख पठांतु। बाकी परे
4: सर 2 लाख
7: कोन हला बापा
4: जियो, से माने कहू छंती मो पार्सल भितरु ड्रग्स मिली छी।
5: अरे
4: काटी देला,
7: पैनिक हुआनी बापा, डिजिटल अरेस्ट वाले किछी नहीं, ए सब फ्रॉड।
4: फ्रॉड
7: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुतिबा साइबर अपराधी को फोन किंबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु। तांकु कोनोसी टंका पठांतु नहीं, आउ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु। जदी बुद्धिमता न देखैबे
4: त टंका हरैबे।
8: आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।
9: আজি আমি কহুছি সেই ত্রিরত্নর কথা, সত বিশ্বাস, সত জ্ঞান, সত আচরণ। হ্যাঁ শ্রোতাবন্ধু, জীবনের আমি বহুত কিছু দেখু, শুণু এবং বিশ্বাস করু, কিন্তু সবু বিশ্বাস ঠিক ভাবে করু, বাস্তবতা এবং সত্যতা সহ অবগত নথাই আমি অনেক সময় বিশ্বাস করি বসু। মন ভাঙ্গি চুরমার হুই আস্থা রহি না নিজ উপরে সমাজ উপরে বিশ্বাস করুথিবা সেই সেই লোক অবা বিশ্বাস করুথিবা সেই কথাটি উপরে বিশ্বাস ভরসার বন্ধ দোহলি গলা পরি লাগে। সত্যতা কো বুঝি সেথিরে বিশ্বাস রাখিলে আস্থা রহিলে সেইঠু হি আলোকর পথ ঝিলমিল হুয়ে। আস্থা রাখিবা, নিজ উপরে বিশ্বাস করিবা, বিশ্বাস করিবা তাঙ্ক উপরে যাহাকু ধরি আমি বাট চালিবাকু চাহুছি। তেবে নিজ সহ নিজ সহিত নিজকু চিহ্নি বঞ্চিবা শিখিবা।

0: पकाओ नहीं।
1: कौन कहुचुलो नातुणी भूली जीबी केमिति निया रडटा कु आगरे पाइथिले पर ता मुहरे दी नडा छाप पकेई थाती
0: आई
1: सेटा देखिबा कु केमितिका कहिलुलो नातुणी नेलु ए लेखनी आके देलु ता चित्तरा

0: एक कठोर निर्देश आपण प्रत्याहार करनी अग्रज मुझे जंत्रणा रे भांगी पड़ुची हृदय विदीर्ण हो जाऊँ अक्षम हो पड़ुची राज आज्ञा पालन पाई
1: अनुज लक्ष्मण यह राजा रामचंद्रंकर निर्देश तुम्हें बाचाता बंद कर आसंत काली प्रभात रे मोर आदेश पालन कर
0: अग्रज

0: की की तुम्हें मां
1: मु समुखरे देवदूत परी दंडायमान ऋषि श्रेष्ठ
0: निसंकोचरे प्रकाश कर मां तुम्हें की ये निघंच अरण्य को आगमन करो किपरि
1: प्रणाम खेनंतु ऋषि श्रेष्ठ
0: आशीर्वाद करूछि पुत्रवती हो मां कुहो कुहो तुम्हें किए
1: अयोध्यार पाटराणी राजा रामचंद्र घरणी जनक नंदिनी अभागिनी सीता
0: जनक नंदिनी सीता एकाकिनी अरण्य मध्य
1: हाँ हाँ ऋषि श्रेष्ठ।

0: ऋषि श्रेष्ठ वाल्मीकि?
1: हाँ, मुँ ऋषि वाल्मीकि। ध्यान रे समस्त अवगत होइछि। कुंठा न करी आसमा, तमे आजि ठारु मोर पालिता कन्या।
0: पिता।
1: छीमा, नयनरु लोतक निगाड़ी गर्भस्थ संतान को जंत्रणा दियो नहीं। आस

0: प्रभु प्रभु
1: के संवाद दूत
0: दुसंवाद प्रभु युद्ध क्षेत्र रे वीरलक्षण निहत
1: दूत असत्य असत्य जंत्रण रे हृदय मोर विदीर्ण हो जाऊ छी छार बालक दय हस्तरे प्राणप्रिय अनुज लक्ष्मण भरत आउ शत्रुघ्न निहत भाग्य रखी विडम्बना सूर्य वंश प्रति नियति रखी निष्ठुर प्रतिशोध ए दुस्समय मु अधर्य हेबी ना प्रतिशोध ने भी भ्रातृहंता अयोध्यार सेना बाहन को जनई दिए दूत मुझे युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण होगी
0: यथाज्ञा प्रभु

0: कौन है कौन है माँ जानकी
1: पिता
0: ध्यान बल रे मु सब जाने माँ ये तो विधि विधान के कहब आन मनरु दुख दूर करी उपवन को आगमन कर माँ मु मृत संजीवनी जल सिंचन करी पुणी समस्त को जीवन दान करी व्यथित न हो आस माँ
2: ऋषि वाल्मीकि प्रणति घनंत ऋषि श्रेष्ठ
0: मर्यादा पुरुष विष्णु अंशी कौशल्यानंदन को आशीर्वाद करिवार क्षमता मोर ना श्रीराम तेबे मु अन्य समस्त को आशीर्वाद करुछि
2: कहंतु कहंतु ऋषि किए दुई बालत शिशु
0: सूर्यवंशी राजा रघुकुल तिलक को मोह करिवार शक्ति ये जगत रे आउ कहार अछि श्रीराम
2: तेबे से माने
0: जथा समय रे अवगत हेबो श्रीराम एबे यज्ञ स्थल को गमन करी अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर मु ये शिष्य दुईटन को संगरे धरी यज्ञ स्थान रे उपनीत होउछी

त अंधेरों काळीमा ना असह्य जंत्रणा हे देह धरी आउ अपवाद जंत्रणा सह्य करिबार शक्ति नाही मोर मुक्ति चाहे मुक्ति चाहे।

0: ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ପିଲା ବୁଢା ଆଉ ଭେଣ୍ଡା ମାନେ
1: ଶହେଟି କଥାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ,
0: କେବଳ ପଇସା ପଠେଇବା ପାଇଁ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପିନ୍ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି, ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ।
2: RBI କହେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପିନ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନର ସହିତ।
3: सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: बड़ी मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा?
3: जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: हेलो
8: राजेश बाबू, वो पुलिस थाना रुको हुई थी।
7: पुणी थारे?
8: आपनो डिजिटल अरेस्ट रह चंती, अन्य कोठरी को जानतो, एकुटिया। आपन को पार्सल रे ड्रग्स मिली थी, लंबा फसी बे।
9: 10,00,000 दियों तो, बंची जीबे।
7: सर ये ते कोटो?
9: कोटे लिंक पटे ही थी, एबे प्रोसेसिंग पाई 2,00,000 पटान तो, बाकी पारे।
7: सर 2,00,000?
10: कौन है ला बापा?

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहुची।
0: पुणी थरे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट रे अछंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिली छी, लंबा फसीबे।
2: 10 लाख दियंतु, बंची जिबे।
0: सर एथे कोठो
2: गोटे लिंक पठाई छी, एबे प्रोसेसिंग पाई 2 लाख पठांतु। बाकी परे
0: सर 2 लाख
3: कोन हला बापा
0: जियो, से माने कहउछंती मो पार्सल भितरु ड्रग्स मिली छी।
1: अरे
0: काटी देला,
3: पैनिक हुआनी बापा, डिजिटल अरेस्ट भली किछि नहीं, ए सबु फ्रॉड।
0: फ्रॉड
3: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुतिबा साइबर अपराधीक फोन किंबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु। तांकु कोनोसी टंका पठांतु नाही, आ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु। जदि बुद्धिमता न देखैबे
0: त टंका हरैबे।
4: आरबीआई कहे सचेतन हुअंतु, सतर्क रहंतु।
5: यात्रीगण दयाकरी ध्यान दियंतु, यात्रा समयरे जदि टीसी टिकेट मागंती तेबे देखै दियंतु, किंतु कोनोसी भी ओटीपी पिन किबा पासवर्ड मागिले तांकु तुरंत भगै दियंतु।
6: आरबीआई कहे ओटीपी किंबा पिन पाई कॉल किंबा मेसेज आसीले टिकिए ध्यान र सहित।
7: दर्शक वृंद, खबरदार, जदि ब्रेकिंग न्यूज हेबारु बंचिबार अछि तेबे पैसा पठेबा समयरे नाम आउ धनराशि सर्वदा पुणि थरे जांच करंतु।
8: आरबीआई कहे कहाको भी पेमेंट कला बेले टिकिए ध्यान र सहित।
9: साथी एबे देखिबा परवर्ती एसएमएस हमको पठाइछंती मंटू सर, जे ग्रहण पटामुंडी केन्द्रापडारु। से सुनिबाको चाहिछंते लोफर फिल्मर गोटे बहुत बढ़िया गीत जहाँ गाइछंती आशा भोसले। तो साथी पहुंचुछि।